0: समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5550 7071 र 0855 7073 53।
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4940 4493 580 र 98 550 26 440।
3: It's 10 o'clock. अहिले 10 बजे को छ।
4: समय को ख्याल राखौं। 10 बज्यो।

0: हेपिन के मेल छोरालाई
1: गीता हेप्न पाइन्छ
0: रोड्दा नि
2: बारिस के
3: हल्का ग्यास्ट्रिक
0: उज्जा मुर्दार
4: तुमलाई हो।

0: समय सूचक का साथ में
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 7071 र 98 550 7073
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4 93 580 98 550 2640
3: It's 6 o'clock. अहिले 6 बजे को छ।
4: जालो रेडियो नेटवर्क। अहिले देलुकी को 6 बज्यो।
5: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो।
4: राष्ट्र को शान किसान।
5: A complete piping solutions.

0: मैं सूचक का साथ माँ
1: दक्षिण कोरिया माँ पढ़ाई रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केंद्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5359 7053 98 550 7071 98 550 7053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4394 440 4395 580 98 550 2640
3: It's 7 o'clock. अहिले 7 बजे को छ।
4: यो रेडियो नेपाल हो। साँझ 7 बजे को समाचार मा स्वागत छ। म राजेन्द्र विक्रम शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूद्वारा ग्यासको सहज आपूर्ति र उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव हुन नदिन प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सांसदहरूद्वारा ध्यानाकर्षण। ग्यास आपूर्ति व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीद्वारा स्पष्ट। करदाता प्रोत्साहन उपहारको घोषणा। सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम मुआग्लेको विश्वास। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका 273 जना भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण र भारतको आसाममा भीषण बाढीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त कम्तीमा 97 जनाको मृत्यु।